0: ശ്രീലെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും
1: अत्याधुनिक सिटी स्क्यान सेवा अब तुलसीपुर को सुलभ सिटी स्क्यान सेंटर में
2: हजुर वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ तथा दक्ष अनुभवी रेडियो टेक्नोलॉजिस्टहरुबाट
3: शरीर का विभिन्न भाग में भएका ट्यूमर कैंसर नाक कान घाटी एपेन्डिक्स मृगौला अधिक टाउको दुखाई लगायत सीटी स्कैन को माध्यम यकिन र अवस्था को पहचान सहित उपचार करी ढुक्क रहनुहोस्।
4: पैसा र समयको बचत सँगै सिटी स्क्यान सेवाका लागि सुलभ सिटी स्क्यान सेन्टर तुलसीपुर छ, गोराई रोड हात्तीखोवा चोकदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ तुलसीपुर दान।
3: जुनसुकै बेला सम्पर्कका लागि फोन नम्बर 082-590-401, मोबाइल नम्बर 97-487-060-11 र 98-578-40-601।